इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: Radio Chennai।

0: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
1: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम ब्रदर आज का वेदर
0: रेडियो चुनाव रेडियो रेडियो चुनाव वेदर अपडेट वेदर अपडेट
1: और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आइए आपको बताते हैं क्या क्या था है आज का मौसम मौसम होगा भोसकी या होगा ऑसम चलिए बताते हैं जी हाँ बादलों और सूरज के बीच में घमासान चलती रहेगी कल के मुकाबले 3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा कम
0: रेडियो चिना रेडियो रेडियो चिना वेदर अपडेट
1: पार्टली क्लाउडी फॉर टुडे आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस यूवी इंडेक्स अभी के लिए वीक पर ह्यूमिडिटी 76% विंड स्पीड है 0 पर विजिबिलिटी 4 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:52 पर आज का सनसेट होगा 7:21 पर

या रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ झूमते रहें, नाचते रहें। याद रखिए, आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स का। सर्च करें रेडियो चुनार हर दिल की धड़कन फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। मैं हूं जॉक्स, आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप से रिएक्ट। दिल करते रहो।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर हम पहुँचाते हैं आप तक जो होता है वायरल, क्योंकि क्या ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, 12 अगस्त 2026 जब एक्लिप्स का हुआ और इसका बड़ा ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिला स्पेन के आसमान में। One of the most dramatic clistelier और ये जो एक्टिविटी है लोगों ने देखी कैप्चर की, और ये नज़ारा तब एम्पलीफाई हुआ जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ खड़ा हुआ चांद। बराबरा दिन जो है अंधेरे में डूब गए, एंड एवरीबडी वॉज लाइक सूरज हुआ मध्यम चांद डलने लगा।
4: वो भी हो गया।
2: रेडियो 90.4 एफएम द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मैं हूं जॉक ज्यूस, आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।
5: चुप।

0: 그딸 남자친구.
1: 아지.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
5: दोस्तों रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे, आज का कोट क्या था? यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सिटी हक

0: Cheers.
1: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो के सफर में मैं हूं आपका हम सफर और सर दोस्त वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको, याद दिला दूं आपको कि आप ही है जनाब जो धड़काते हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM। तो क्या करना है आपने, फोन उठाना है, डायल करना है 8899904 8899904 9 0 4 9 0 4 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी हाँ, टेक्स्ट मैसेज के अलावा डीएम भी कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM। और आज हम बात करने वाले हैं विमेन एथलीट्स की। जी हाँ, विमेन एथलीट्स और एथलीट्स से रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगी कि किस तरह से एंड हाउ इट वॉज द राइज ऑफ विमेन एथलीट्स। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आज बात होगी राइज ऑफ विमेन एथलीट्स की। आप भी टॉपिक का हिस्सा बने, अपनी बात हम तक पहुंचाए, हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चुनार की हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM। मैं हूं जॉग्स, स्टे हक्ड, धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: bunch of Zeus. Going out. Zeus. और दिल की धड़कन आप और हम धड़का रहे हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मजेदार शो वाज़बानी ऑन रेडियो चना 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। मैं हूँ जॉक ज्यूस और आज बात हो रही है राइज ऑफ वीमेन इन एथलीट्स।
1: ज्यूस
0: हमारे साथ बिल्किस जुड़ी हैं। बिल्किस लिखती हैं कि सर, नारी सब बेबारी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें या किसी भी जॉनरा की बात करें, देयर आर वुमेन जिन्होंने झंडे गाड़े हैं और औरतें छोड़िए मर्द भी उनसे इंस्पायर हुए हैं।
1: Yes.
0: So once a wise man said that real men applaud for the successful women and the women around. Rise of Women in Athletes, आज हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इट वॉज 1900s जब 22 खातून जो है आउट ऑफ 997 टोटल एथलीट्स जिन्होंने 5 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की इंक्लूडिंग टेनिस एंड गोल्फ। और ज़्यादा दूर ना जाते हुए अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स ऑफिशियली फर्स्ट इन हिस्ट्री, जहां पर एग्जैक्ट जो इक्वालिटी थी दैट वाज 50-50 बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर एथलेटिक कोटास। और वही मिलानो कॉटिना 2026 विंटर ओलंपिक्स, जहां पर 47% ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन देखी गई, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया वुमेन्स डबल लीग और इक्वल रेसिंग डिस्टेंस फॉर क्रॉस कंट्री इवेंट्स। और वही अगर हम थोड़ा सा इतिहास में और पीछे जाए तो वुमेन वेयर कम्प्लीटली बार्ड फॉर रनिंग द ओलंपिक मैराथन अंटिल 1984। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि कितना लड़ा है फीमेल्स ने, हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, हु आर इंटर एथलीट एक्टिविटीज, उन्होंने कितना लड़ा है, कितनी जद्दोजहद की है अपना नाम रोशन करने के लिए इस, या किसी भी स्पोर्ट्स में अपना नाम चमकाने के लिए। रेडियो चुनाव 90.4 बातचीत जारी है, आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। 8899-0049-0049 नंबर इस तुहन दिलन वाट चु दिवा सानियन दिलन सहित। मैं हूं जॉक ज्यूस, सिटी हक्ट, मेरी जान, धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम

0: ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जूस कौन आया?
1: जूस।
2: और दिल की धड़कन और आप धड़का रहे हैं जी हाँ, मैं हूँ जॉक्स, आप सुन रहे हैं मजेदार शो सुबह ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। आज बात हो रही है राइज ऑफ विमेन इन एथलीट्स। ये अक्सर हम जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं या किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी की बात करते हैं, इट्स काउंटेड हाउ मच व्यूअरशिप और हाउ मच क्राउड इट हैज गेन्ड। और वही अगर हम कंपैरिजन करें फॉर फीमेल्स एंड मेल टूर्नामेंट्स एंड एथलेटिक एक्टिविटीज़, तो आपको बताना चाहूँगा दैट आंकड़े हमें बताते हैं दैट 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप It remains the most watched stand-alone women's sporting event in history, जिसकी global audience थी nearly 2 billion viewers. और वैसा ही कुछ ICC Women's Cricket Cup, Cricket World Cup 2025 में देखने को मिला, जहां पर 185 million viewers, और साथ ही साथ 2025 Women's Rugby World Cup, जहां पर 82,000 लाइव फैंस जुड़े हुए थे इन मैच के साथ। और वही अगर हम यूके विमेन स्पोर्ट्स की बात करें तो इट सरपास 10,000 ब्रॉडकास्ट आवर्स इन 2025। और वही अगर हम देखें तो कितने सारे ऐसे मैच है जो दुनिया भर में देखे गए या देखे जाते हैं, जस्ट बिकॉज द स्पोर्ट्स इज गुड, जस्ट बिकॉज द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग। इट्स नॉट अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, बट इट्स अबाउट द स्पोर्ट्स इन देम। जी हाँ, गेम कोई भी हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से खेल रहा है, कितना डेडिकेटेड, कितना लॉयल और कितना एक्टिव है अपनी गेम को लेकर, वो इस गेम की डेडिकेशन और इसकी व्यूअरशिप डिसाइड करती है। आज सभी स्पोर्ट्समैन एथलीट्स को पहचान मिली है उनकी गेम की वजह से, चाहे वो मर्द हो या औरत। रेडियो चैनल 90.4 एफएम बातचीत जारी है, अगली पेशकश रहेगी आई फील गुड, अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक की सौगात कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर सिडे हक्ट दिल गाते रहो।

0: ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

क्या तो पता नहीं, पर खबर आई है कि चिनार बीच साजार जी असरा करेगी। क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अजी क्या शुरुआत हुई है, सलमान बॉय ने बोला डन ब्रो, तो डन ब्रो शुरुआत हो चुकी है चिनार बीट्स की। बहुत सारी बातें होती है, ऑफकोर्स एवरी शो एट रेडियो चिनार, चाहे व्हाट्सएप है या है दिल की बात साहिल के साथ, हंगामा चिनार बीट्स, हर जगह कुछ ना कुछ क्रेजी तो होता ही है। और आज चिनार बीट्स से लेकर शो हंगामा, म्यूजिक ऑन डिमांड, सब कुछ आरजे असरा करेंगे। एंड एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम। शो शुरू हो चुका है, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। मैं वस्त्रा संतरे, रेडियो सुना 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: Welcome back to Shoot in Our Beats. Beats on repeat.
1: Beats on repeat.
0: Exactly, that's the point of the show. Beats on repeat, back to back tracks, only on Radio Sonar 90.4 FM. Back to back tracks hote hain, bada hi maza aata hai. But dekhiye, aaj Friday hai aur 12:30 se lekar 2 tak devotional tracks chalte hain. But jo bhi chunks hain, usse pehle wo information update aap tak pahunchana zaruri hai. Sabse pehle agar hum NH44 update ke bare mein baat karein, to two way traffic available hai abhi. It's ongoing and you just have to take care of yourself and ज़्यादा high speed पे travel नहीं करना है, traffic SOPs को follow करना है और अपना ख्याल रखना है और make sure if you are travelling through a big vehicle, यानी कि किसी bus से या आपके पास कोई four wheeler है that is actually a big vehicle, so आपको अपना ख्याल रखना है because controls and coordination से ही ये जो रास्ता है ये पूरा होता है. और especially अगर बात करें अभी के आज मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है, तो इस मौसम में travel करना बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो best मौसम है travel के लिए. जी हाँ, बीट्स और रिपीट्स तो है और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलता है. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ट्रैक है, फिर मिलेंगे चलते चलते. देखिए, आज तो आपका और मेरा जो टाइम है गुफ्तगू कन्वर्सेशन वो काफ़ी देर चलेगी एंड मैं ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती. ओखा है जी, ओखा के रब ने बना दी जोड़ी से ये सॉन्ग है और हमारी भी जो जोड़ी है वो ऊपर वाले ने ही बनाई है किस्मत से. 12 से लेकर बराबर 4 तक आज आपका और मेरा जो साथ है वो रहेगा. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. बट हंगामा नहीं चल रहा है सुनार बीट्स.

देखिए, कहते हैं कि महबूब जो होता है वो एक ज़ाहिरी तौर पर होता है और एक बातनी तौर पर होता है। महबूब इस दुनिया में शायद वो इंसान हो जिससे आपको प्यार है, पर वो इंसान है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका महबूब वो नहीं बल्कि एक बातनी महबूब है, जो ऊपर वाला है, जिसे हम सूफिज़म में ये कहते हैं कि कैसे एक ऐसी एंटिटी है, लाइक वी कॉल देम गॉड, अल्लाह सुभान ताला, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना इश्क करते हैं कि हमें उनके इश्क में दुनिया का महबूब भूल जाए। और मेरा मानना है कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कैसे भी हैं, चाहे कितने गुनाह करते हैं, अपनी गुनाहों की मगफिरत मांगते रहिए, वो आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं। और जिस तरीके से आप अपने रब को एक अपने दिमाग में जो आपकी इमेज है, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है जिस तरह से आप अपने खुदा को परस्यू करते हैं उस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं। कैसे? अगर आप ये सोचें कि मेरा खुदा कितना रहीम है, हर गुनाह माफ़ कर देता है, तो आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बस यही है आज का दिन। इट्स ऑल अबाउट कि आप रिफ्लेक्ट करें, आप अपने बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स, हमारे लिए, रेडियो चनार की पूरी टीम के लिए दुआ करें। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने लिए, लोगों के लिए, और जो लोग आपके साथ अभी नहीं हैं उनकी मगफिरत के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो चनार 90.4 FM। मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई।

0: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब। सुन कर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: बपर खान तीगच जान हाविसे, सबन मेहमान तीगच जान हाविसे, आफ्ताब डीशत जून आस मंद छान, आफ्ताब डीशत जून आस मंद छान, तारक अवसान ती गच जान हाविसे, वुछमय छलत बल मारछी कारितल, वुछमय छलत बल मारछी कारितल, सुंबल तो रोय खान ती गच जान हाविसे।

0: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: आकार बनूं सूद फरामोश
2: मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम पे डिवोशनल चंक। और जो डिवोशनल म्यूज़िक डिवोशनल ट्रैक्स जो हमारे चलते हैं वो 12:30 से लेकर 2 तक आप फैजियाब होते हैं। बहुत से हमद नशीद और सूफी कलाम हो, नात नशीद और जो भी हमारे पास जो डिवोशनल ट्रैक्स हैं, ताकि हम अपने आप में रिफ्लेक्ट करें कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत।
1: नाले बुल बुल के सुनूं और हम तन कोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के काम।
2: पर देखिए, टॉपिक के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी स्पीक्स, यानी कि कैसे जो लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आवाज़ उठाए। द

वॉइस ऑफ पीपल शुड बी हर्ड, बट वो तब सुनी जाएगी जब कोई इंसान, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई कम्युनिटी आगे आके अपने हक की बात करें. अगर हम इस्लाम की भी बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें, तो हर रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि अपने हक के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता. स्पेसिफिकली अगर हम इस्लाम की बात करें, तो ऊपर वाले ने हमारे पास दो तरीके दिए हुए हैं, दो भी नहीं तीन तरीके दिए हुए हैं कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो या तो आप माफ कर सकते हैं, या अगर आपके पास ताकत नहीं है कि आप उस इंसान से, उस कम्युनिटी ग्रुप से वापस अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो उन्हें बस ऊपर वाले के लिए रख दीजिए कि वो कर्मा जो है चीज़ है, दैट्स रेल, तो वो चीज़ उनके साथ खुद हो जाएगी, जो उन्होंने बोया है वो खुद काटेंगे. बट एक तरीका ये भी है जो मैक्सिमम रिलीजन्स में बहुत ही सराहा जाता है, कि वो अपने हक के लिए बात करना. और आज का टॉपिक भी वैसा ही है, दैट इज सोसाइटी स्पीक्स, यानी कि जो लोग हैं सोसाइटी के, जो पब्लिक कंसर्न्स से लेकर होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके बारे में बात करना, यू हैव टू वॉइस अप फॉर दोज थिंग्स. और अगर एक इंसान भी आगे बढ़े, एक इंसान के साथ जुड़कर 100 लोग बनते हैं 100 से 1000, 1000 से करोड़, और ऐसे ही एक मूवमेंट तैयार होता है. तो ज़रूरी है कि जो भी इंसान, चाहे हमारे एस्पिरेशंस हैं, डेली नीड्स हैं, या कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में बात करें, चाहे ड्रग अब्यूज़ है, या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी, या वुमेन रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, उनके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है. अब देखिए, आज हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और जमतुल मुबारक भी है, आप इस बारे में क्या जानते हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं इस्लाम में, उनके बारे में क्या जानते हैं, या ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, उसके प्रति हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, वो आप हमसे शेयर कीजिए. 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बन सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ अस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। गर्ल्स लाइक टू स्विंग एंड मेरी बात करें तो आई एम स्विंगिंग फ्रॉम रेडियो चिनार पे जो शो है चिनार बीट्स टू हंगामा।
1: तुम भी तो हो
0: हंसती गाती लड़कियां, ये दिल मिलाती लड़कियां। देखिए लड़कियां हैं वो तो सही है, बट जो ये लड़की है दैट इज मी। अभी शो हंगामा शुरू हो चुका है चिनार बीच से। हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई। सोसाइटी स्पीक्स, क्या बोलती है सोसाइटी, क्या बोलती पब्लिक, उसके बारे में बात की। और अभी की बात करें तो हंगामा शुरू हो चुका है और कुछ देर पहले 2 से 4 हंगामा चलेगा और अभी आप तक पहुंचाएंगे रेलवे अपडेट।
1: गर्ल्स लाइक टू स्विंग।
0: और आज की अपडेट यही है कि जो भी लोकल सर्विसेज हैं, दे आर एज पर द लोकल सर्विसेज, नॉट एज पर द सर्विसेज, बट द पॉइंट इज कि लोकल सर्विसेज जो है वो एज पर द शेड्यूल है एंड जो समर टाइम टेबल है आप वो अवेल कर सकते हैं रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से। ट्रेन बिटवीन स्टेशंस एंड वेयर आर द ट्रेन्स एक्चुअली, सब पता चलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप पर। अब देखिए एंजॉय करना जरूरी है बिकॉज इट्स फ्राइडे और कल है छुट्टी, उसके बाद है संडे, सो लॉन्ग वीकेंड, मस्त ही मस्त। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हाय, मैं हूँ असलाउड। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और आज देखिए, शो हंगामा अभी हो रहा है। वैसे तो चिनार बीच से मैं आपके साथ हूँ, बराबर 12 से लेकर 4 तक मैं आपके साथ रहूँगी। बट अभी की बात करें तो अभी शो हंगामा का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। कैसी होती है ज़िंदगी उन सब लोगों की जो एक्चुअली डिजिटल लाइफ जीते हैं। बड़ी मस्त होती है, बड़ी क्रेज़ी होती है। बट अगर सच में रियल साइड देखें तो इनकम अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी है बॉस।
1: अब करता था
0: जी हाँ, वैसे ही पहले मजे ही मजे और फिर सजा ही सजा होती है। क्यों? क्योंकि आप एक फॉलोअर रेस में फंस जाते हैं। आपको ये लाइक यू हैव टू बी रेलिवेंट ऑल द टाइम। अगर आप रेलिवेंट नहीं है तो आपका जो मतलब मीनिंग है, आपका जो वर्थ है सोशल मीडिया की दुनिया में, वो कम होता जाता है। बट एक्चुअली फॉलोअर रेस में फंस जाना बहुत ही बुरी बात है। हाँ, अब जिनका ब्रेड एंड बटर इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो तो दे हैव टू बी रेलिवेंट, दे हैव टू कीप ऑन वर्किंग, दे हैव टू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस रेस से दूर रहें। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, लाइक सोशल मीडिया शुड बी अ फन थिंग टू डू, सोशल मीडिया शुड बी समथिंग जो आप अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, नॉट जस्ट बिकॉज कि यू वॉन्ट टू डू इट फॉर ब्रेड एंड बटर और फिर आप उस फॉलोअर रेस में फंस जाएं। एक एथनिसिटी होनी चाहिए, एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और एक ऑथेंटिसिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।

एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अभी मैं आपके साथ हूँ तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा। 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूँ सुंदर, रेडियो सुनार 90.4 एफएम। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून किया है कश्मीर का सुपर रेडियो स्टेशन 90.4 FM, रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त

तो भैया साहिल मुजफ्फर लेकर आया हूँ शाम का शो दिल की बात साहिल के साथ। और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे जुड़े होंगे हमारे साथ। इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं और चाय की चुस्की के साथ फैमिली के साथ बैठ के मजा ले रहे हैं शो का, तो बॉस वहीं पर रहिएगा। लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फोटेनमेंट इज लाइंड अप फॉर यू। ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के रहे, रफ्तार पे काबू रखिए, आराम से गाड़ी चलाइए, लेन ड्राइविंग फॉलो करें और SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि इट्स एट द एंड ऑफ द डे फॉर आर सेफ्टी। आप सबकी जो सेफ्टी है उसी के लिए तो SOPs बनाए जाते हैं ना। तो 5 मिनट हम घर लेट से पहुंच जाएं, लेकिन सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एम्बुलेंस दिखाई दी तो सबसे पहले उसे जाने के लिए जगह दीजिए। फ्राइडे की ये सुहानी शाम, सफर हो गया है शुरू दिल की बात साहिल के साथ। यू गाइज फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज द फ्लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग ट्रैक ऑफ 90s, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। आई एम प्लेइंग दिस ओनली फॉर यू। आप कहीं जाइएगा नहीं, साथ जे साहिल मुजफ्फर इन द हाउस लौट के आऊंगा। आइए लेट्स लिसन दिस रोमांटिक ट्रैक।

जी हाँ, अगर आपको भी हमसे मोहब्बत है, आपको बताना आएगा, आपको करना क्या है, आप जस्ट मोबाइल फोन उठाइए, जी हाँ, और डायल कीजिए 8999904904 और पहुंच जाइए हम तक और बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं रेडियो चिनार से।

जी हाँ दोस्तों, ये सफर यूं ही रहेगा जारी। सुनते रहिए रेडियो चेन्नई। इस खूबसूरत सी शाम में हम हैं आपके संग और ये सफर दिल की बात साहिल के साथ पे। आज हम बात

करेंगे। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम सबकी जिंदगियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है और हमें इस बात को समझना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो फॉरेस्ट है, जो ग्रीन गोल्ड है, जो ऊपर वाले का एक एक खजाना ऊपर वाले ने हम सब के लिए हमें मुफ्त में दे दिया है, उसका रखरखाव करना है, उसको कंजर्व करना है और अपने माहौल को बचाना है। आज हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट कवर है अक्रॉस द वर्ल्ड, या स्पेशली हम इंडिया की बात करें, कश्मीर की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये फॉरेस्ट कवर होना? आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 8899-04-904 पे कॉल व टेक्स्ट मैसेज करें और एल्स यू कैन डीएम मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स आरजे साहिल मुजफ्फर के नाम से मिलूंगा फेसबुक, इंस्टा और एक्स। ऊपर वाले ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दी है जिसका हम जितना शुक्र करें वो कम है। आप देखिए, जो पानी के खजाने हैं जो ऊपर वाले ने हमें अता किए हैं, जो ग्रीन गोल्ड है जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, आप देखिए इससे कितना बैलेंस रहता है। जो ये ऊंचे पहाड़ हैं, इससे एक माहौल में एक वो कहते हैं ना कि एक बैलेंस रहता है। और टाइम टू टाइम जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है, हमारे खेत खलियानों में हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कल्चर सेक्टर को वो सैराब हो जाता है। और जब भी इंसान की जो ज़रूरत होती है, ऊपर वाला बैठा है, उनको पता है कि कब क्या करना है, वो हो जाता है। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां ये हैं कि हम इस अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। आप देखिए आजकल कितनी गर्मी रहती है, हर जगह से लोग बस यही बात सबसे पहले करते हैं कि आज शुबारिया गर्म, आज शुबारिया गर्म। लेकिन जब हम कश्मीर को देखते हैं, आज से 15-20 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन 10 साल पहले की आप बात करें, वेदर वॉज सो प्लेजेंट और लोग पूरी दुनिया से इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए कश्मीर आते थे। लेकिन अभी यहाँ पे भी ग्रेजुअली हर गुजरते साल के साथ टेम्परेचर रेज हो रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट्स बिकॉज जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो हमारा माहौल है, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। कॉन्क्रीट जंगल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रही है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और जंगलों का बेतहाशा कटाव हो रहा है, वाटर बॉडीज़ को हम पल्यूट कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, बताइए हमें, और हमें भी अच्छा लगेगा जब आपकी बात हम तक पहुंचेगी। फिलहाल आज 90s के दौर के कुछ गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, मैं हूं साहिल मुजफ्फर। आइए ये ट्रैक सुनते हैं एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोना लव दिस सॉन्ग। साजन मूवी का ट्रैक है, तू शायर है मैं तेरी शायरी। मैं हूं साहिल मुजफ्फर, लौट के आऊंगा।

0: साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन। ऑल राइट, हर दिल की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो चनार। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ। मैं हूं साहिल मुजफ्फर। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर के हवाले से बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फिश हैं, जो अपने मकसद के लिए इलीगली इन फॉरेस्ट्स को रख रखाव नहीं करते हैं, कटाव करते हैं और अपने पर्सनल गेन्स के लिए, कुछ पैसों के लिए फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसका जो खमियाजा है ना, वो हर एक को भुगतना पड़ता है। हम सब की ये जिम्मेदारी, इफ़ वी सी समथिंग इररेगुलरिटीज हैपनिंग, कहीं पे कुछ इलीगल काम हो रहा है, वी हैव टू इन्फॉर्म द लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को रिवील नहीं की जाएगी, आप बस इंफॉर्मेशन दीजिए अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ इलीगल हो रहा है, इररेगुलर हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं। यू कैन गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फ़ोन करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके, जैसे भी आपको सही लगे इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि फॉरेस्ट की जो कटाई है वो रात के अंधेरे में हो रही है और जो फॉरेस्ट स्मगलर्स हैं वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट ट्रेजर को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि अगर हम इस पे नज़र बनाए रखें तो हम इस बात का सबूत देंगे कि हम अपने शहर के ज़िम्मेदार शहरी हैं। और जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उनका यही रोल रहता है कि वो अपनी सोसाइटी पे नज़र बनाए रखे और अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहने की हिम्मत होनी चाहिए और बिना डरे, बिना किसी झिझक के हम अपने माहौल को, अपने वाटर बॉडीज़ को, अपने फॉरेस्ट को और कंजर्व करके उसका रखरखाव कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट्स को हम होने से बचा सकते हैं। हमें बस करना क्या है, हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड वी हैव टू रिंग

the bell. रेडियो चनार की अगर हम बात करें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. आप हमें सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं. हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है, रेडियो चनार 90.4 एफएम ऐप स्टोर या एंड्रॉयड से डाउनलोड करके 24/7 अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हैं तो रेडियो चनार आपके संग संग है. और हमारी

मैसेज करके हमें बताए। फिलहाल 90s का मौसम स्टूडियो में लौट आया है एंड आई एम प्लेइंग सम सुपर कूल 90s सॉन्ग्स। आप एंजॉय कीजिए एंड आई एम श्योर कि आप भी आज की इस शाम को एंजॉय कर रहे होंगे। साहिल है मेरा नाम, लौट के आऊंगा।

जी हाँ, ये 90s के ये ट्रैक्स आज भी दिलों की धड़कनों को तेज करते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का शो आपने एंजॉय किया होगा। ये जो गाने हैं ना, ये एंथम हुआ करते थे और आज भी जब ये गाने बजते हैं ना तो बहुत सारी यादें इनके साथ जुड़ी है। फिलहाल यादों के सफर को थोड़ा सा देते हैं विराम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि म्यूजिक की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, लेकिन घड़ी कर रही है मुझे इशारा कि इट्स टाइम टू रैप अप द शो, घर जाने का वक्त आ गया, लेकिन म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चिनार। कल छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे है, हम आप सभी को विश करते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। एंजॉय द डे विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, और आराम से रहिए। और दो दिन की छुट्टी है, इनफैक्ट सैटरडे संडे मंडे को होगी आपसे मुलाकात, आप रखिएगा। तब तक अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर

देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4
3: FM।
5: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

सूरज, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: और
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना, ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हन हन हन प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: छोड़ दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।